0: जी सामिन, काजुयोशी साइतो का गीत सेमी यानी झिंगर हमने सुना, आप सबको कैसा लगा? अब फिर झिंगर की कुछ बातें करेंगे।
1: हमारे अमले के जापानी रुकन युकी यासुमोतो बता रहे थे कि मगरबी जापान के झिंगर की आवाज़ जापान के मशरकी हिस्से के झिंगरों से कुछ मुख्तलिफ होती है।
0: असल में जो अपने हमारे यासुमोतो साहब हैं, उनका आबाई जो मकाम है, आबाई शहर समझ लें, वो मगरबी जापान का हिरोशिमा है ना, तो वहीं की बातें बताएंगे ना। अच्छा, मुझे उन्होंने बताया कि बचपन में जब वो हिरोशिमा में थे तो उन्होंने सिर्फ कुमा जैमी झिंगर और अबरा जैमी झिंगर और नीनी जैमी झिंगर की आवाज़ें सुनी थी।
2: क्योंकि यासुमोतो तो कहते हैं कि उन्होंने हिरोशिमा में मिन मिन जैमी झिंगरों की आवाज़ कभी नहीं सुनी, लेकिन वसीमा मैंने तो टोक्यो में काफ़ी सुनी है।
0: है ना, मेरी तो ख्वाहिश है, तमन्ना है और दुआ है कि खिजा की नवीद सुनाने वाले सुकुसुकुबोशी झिंगर भाई का मौसम जल्दी जल्दी आ जाए।
1: हाँ, मैंने सुना है कि टोक्यो में जुलाई के वस्त से अगस्त के वस्त तक सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो अभी जरा सांस लीजिए, कुछ बर्दाश्त कीजिए।
0: वाह, आप भी शायर हो गए। अच्छा, इस शेर से मुझे जापान की शायरी की सिंफ हाइकू याद आ गई।
2: जी बिल्कुल, हाइकू दरअसल फितरत की शायरी है, जो फितरत में मौजूद छोटी छोटी हयातियात यानी मसलन फूल, परिंदे या हशरातुल अर्ज वगैरह पर रोशनी डालती हैं। बुनियादी कवायद के मुताबिक 5-7-5 की तरतीब में 17 हरूफ में लिखी जाने वाली हाइकू में मौसम का एक इस्तियारा या लफ्ज़ भी शामिल होता है जो साल के वक्त मौसम की निशानदेही करता है।
1: तो मौसम और झिंगर का तो मेरे ख्याल में चोली दामन का साथ है, तो क्या झिंगर के मौसम पर भी हाइकूज लिखी गई हैं?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, दुरुस्त समझे, जवाब दुरुस्त है। मौसम गर्मा या खिजा की तर्जमानी के लिए झिंगर पर भी हाइकू मौजूद हैं, और जापान में हाइकू के मशहूर शायर बल्कि हाइकू के बानी शायर मात्सुओ बाशो की एक जापानी हाइकू है, शिजुका साया इवानी शिमी इरु सेमी नो कोए। इसका उर्दू तर्जमा है, हर सू खामोशी उस पर चट्टानों को छेदती झिंगर की आवाज़।
1: वाह, इन चंद अल्फाज ने ही समा बांध दिया।
0: अच्छा, इस अल्फाज से जो कानों को छेदती वाली बात है, उससे मुझे ख़ासतौर पे झिंगर की वो वाली किस्म याद आती है, सुकुसुकुबोशी, जो उसकी आवाज़ वाकई कानों को छेदती महसूस होती है, अपने परों को रगड़ के निकालता है ना वो आवाज़।
1: अच्छा।
0: तो ये था जापान की एक शायरी हाइकू जिसमें झिंगर का जिक्र है। हमारे पाको हिंद में भी तो झिंगर पर शायरी हुई है ना।
1: हाँ, अब खदीजा साहिबा से झिंगर पर नज़्म सुनते हैं।
2: जरूर जरूर जरूर जरूर, नज़्म और वो भी झिंगर पर।
1: कोई भी सुनाइए।
2: जी जरूर, ख्वाजा हसन निज़ामी की नज़्म झिंगर का जनाजा पेश है भाई, उसके चंद अशआर पेश है।
1: अच्छा।
2: ना बिच्छू का सा जहरीला डंग था, ना सांप का सा डसने वाला फन था, ना कौवे की सी शरीर चोंच, ना बुलबुल की मानिंद फूलों की इश्कबाजी, शाम के वक्त मुसलसल बीन बजाता था।
0: वाह वाह, ये नज़्म
1: जबरदस्त। मेरे ख्याल में ये वो वाला झिंगर है जो हमारे यहाँ घरों में होते हैं पाकिस्तान में। झिंगर जिंदाबाद। चलिए अब सामीन से पूछ लेते हैं कि उनके इलाके में झिंगर शोर मचाते हैं या नहीं, और अगर मचाते हैं तो ये शोर किस तरह का होता है।
0: जी, लेकिन घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि हम कुछ और पैगाम दें। हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर सबसे नीचे मालूमात की सुर्खी तले एक लिंक है जिसका उन्वान है,
2: हम आपकी आरा के मुंतजर हैं, इस्तेमाल की शरायत मंजूर होने की सूरत में हिदायत पर अमल करते हुए पैगाम रवाना कर दीजिए।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कुनिचवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को रोहिणी रमन का भी कुनिचवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और लेकर आ गए हम आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: रोहिणी जी, क्या हाल है? जापान भर में जारी गर्मी की इस प्रचंड लहर में अपना सही से ख्याल तो रख रही है ना?
1: जी बिल्कुल रख रही हूँ। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने भी तापघात की चेतावनी जारी कर लोगों से तरह तरह की सावधानियां बरतने को कहा है। पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करने को कहा है।
0: जी, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन गर्मियों के दौरान होने वाले तरह तरह के उत्सवों और मत्सरियों का भी आनंद ले। जैसे बीते दिनों मुझे टोक्यो के एक लोकप्रिय इलाके ओदाइबा में आयोजित हानाबी यानी आतिशबाजी का लुत्फ उठाने का मौका मिला।
1: अरे वाह, ओदाइबा की हानाबी! करीब 10 साल पहले जब मैं पहली बार जापान आई थी तब मैं वहाँ रहती थी।
0: अच्छा।
1: तब देखी थी। जी बहुत मजा आया था। समुद्र किनारे बैठकर ठंडी ठंडी बयार का आनंद लेते हुए आसमान में टिमटिमाती रंग बिरंगी आतिशबाजी सचमुच कमाल की थी।
0: अच्छा, आपने भी देखी। वैसे जानती है जापान भर में गर्मियों के दिनों में हानाबी के सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं। छोटे बड़े मिलाकर लगभग 1000 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
1: अच्छा, यानी इन दिनों हर सप्ताह कहीं न कहीं एक हानाबी का कार्यक्रम।
0: जी,
1: लोगों के मनोरंजन का जबरदस्त इंतजाम है ये तो। सुना है कि हर आयोजन में 10 से 30 हजार आतिशबाजी छोड़ी जाती है। वैसे ये बताएं कि हानाबी का आयोजन गर्मियों के दिनों में ही क्यों होता है?
0: असल में इसके कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मौसमी कारण हैं। इनका इतिहास जापान के एदो काल में जाता है। 1733 में अकाल और बीमारियों से मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति और सम्मान तथा भविष्य में आपदाओं से संरक्षण की प्रार्थना के रूप में इनका आयोजन किया जाने लगा। इनमें सबसे प्रसिद्ध रही सुमेधा नदी पर होने वाली आतिशबाजी। उसके बाद ये परंपरा देश भर में फैल गई। गर्मियों की रातें सुहावनी हुआ करती थीं और लोग घरों के बाहर निकल सकते थे। साथ ही पुराने जमाने में धान की रुपाई के बाद और कटाई से पहले किसानों के पास थोड़ा समय होता था जिसमें वे इनका आनंद ले सकते थे।
1: अच्छा, यानी वक्त के साथ हानाबी गर्मी के दिनों की मात्सुरियों का अहम हिस्सा बन गई।
0: जी।
1: अच्छा, जब लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र या नदी किनारे इनका आनंद लेने जाते हैं। मैंने देखा है कि इन मात्सुरियों में मेले भी लगते हैं जिनमें पास पड़ोस के लोगों के साथ मिलना जुलना भी हो जाता है।
0: जी हाँ, और अक्सर लोग गर्मियों की पारंपरिक जापानी पोशाक युकाता में दिखाई देते हैं।
1: अच्छा
0: अच्छा, रोहिणी जी, आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि हानाबी का आयोजन मुख्य रूप से नदी किनारे या समुद्र तट पर किया जाता है, क्योंकि एक तो इससे लकड़ी के मकान सुरक्षित रहते हैं
1: और दूसरे इन इलाकों में हवा भी

0: होती है जिससे धुआं फटाफट गायब हो जाता है।
1: जी बिल्कुल सही। अच्छा क्या आप जानती हैं कि हानाबी का शाब्दिक अर्थ क्या है?
0: हाना तो पता है, हाना यानी फूल, जो जापानी लोगों को बेहद प्रिय होते हैं। यहाँ हर मौसम का एक खास पुष्प मिल जाएगा। बी का क्या अर्थ है?
1: बी का अर्थ है आग, यानी हानाबी का मतलब हुआ आग के फूल।
0: अरे वाह, आग के फूल। तभी मैं देखूं कि ज्यादातर हानाबी जब आकाश में फूटती हैं, सुंदर से फूल के जैसे दिखाई देती हैं, जैसे गुलदाउदी का फूल हो।
1: जी गुलदाउदी और पियोनी के फूलों जैसी आतिशबाजी सबसे लोकप्रिय हैं। फिर कुछ आसमान में शिदारे यानागी यानी वीपिंग विलो या तितली या झरनी जैसी भी दिखाई देती हैं। स्याह आकाश जब इनसे रोशन होता है तो कितना रोमांचक दृश्य दिखता है।
0: सचमुच गर्मियों में इन उत्सवों की धूम सारी थकान और बेचैनी खत्म कर देती है और मन उल्लास से भर जाता है।
1: वाकई, और मेरा मन हर सप्ताह मिलने वाले ढेर सारे पत्रों से खुश हो जाता है। तो उठाते हैं ये पत्र जिनमें श्रोता मित्रों की राय किसी पटाखे से कम नहीं है।
0: तो चलिए मैं लेती हूँ यह पत्र। पूर्व बर्धमान पश्चिम बंगाल से प्रदीप बसाक ने उनके गांव में आयोजित होने वाली श्री जगन्नाथ प्रभु रथ यात्रा के बारे में जिक्र किया है।
1: अरे वाह, हम भी अभी जापान के उत्सवों की बात ही कर रहे थे और देखे ये उत्सव पर पत्र आ गया। जानती है, 2 साल पहले चेरी की देव से कार्यक्रम के लिए मैंने टोक्यो में आयोजित होने वाली रथ यात्रा की रिपोर्टिंग भी की थी।
0: अरे वाह,
1: चलिए आगे बताएं कि प्रदीप जी क्या लिखते हैं।
0: जी लिखते हैं, शुभ रथ यात्रा के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे गांव में रथ यात्रा का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि हमारे गांव की परंपरा, आपसी सद्भाव और मिलन का एक अनोखा अवसर है। रथ यात्रा के अवसर पर हमारे गांव में भव्य मेला लगा है। मेले का उत्सवमय वातावरण मन को आनंद से भर देता है। गर्मा गर्म जलेबी, तरह तरह की मिठाइयाँ, कुरकुरे पापड़, भुनी हुई मूंगफली, स्वादिष्ट घुगनी, मुगलई तथा अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की दुकानों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। सभी के बीच प्रेम, अपनापन और भाईचारे का सुंदर वातावरण बन जाता है। यही मिलन हमारे ग्रामीण जीवन और सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी पहचान है तथा नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का माध्यम भी है। मेरा विश्वास है कि रथ यात्रा का यह पावन उत्सव हम सभी के जीवन में प्रेम, सद्भाव, मानवता और पारस्परिक सम्मान का संदेश फैलाएगा।
1: सभी मित्रों को भी रथ यात्रा की बधाई। और प्रदीप जी, आपने अपने यहाँ की जगन्नाथ यात्रा की ऐसी विस्तृत जानकारी दी कि लगता है मानो हम भी आपके साथ मेले में पहुँच गए हों। और देखिए, प्रदीप जी ने अपना एक और पत्र भेजा है जिसमें वे जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के फुकुओका के पारंपरिक हाकाता गियोन यामाकासा उत्सव के बारे में NHK वर्ल्ड जापान के फेसबुक पोस्ट के बारे में उन्होंने लिखा है।
0: जी
1: लिखते हैं कि इस उत्सव के बारे में जानकर मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। लगभग 780 वर्षों से भी अधिक समय से आयोजित होने वाला यह उत्सव केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह लोगों की एकता, साहस, अनुशासन और पारस्परिक सहयोग का अद्वितीय प्रतीक है। सजी हुई भारी भरकम झांकियों को कंधों पर उठाकर लोग जिस उत्साह और अद्भुत सामंजस्य के साथ तेजी से आगे बढ़ते हैं, उसे देखकर सहज ही समझा जा सकता है कि किसी परंपरा को जीवित रखने के लिए लोगों का प्रेम कितना गहरा हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसी भावना और उत्साह के साथ इस उत्सव को आगे बढ़ाना जापानी संस्कृति की मजबूत नींव का परिचायक है। विशेष रूप से यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस उत्सव को जापान की महत्वपूर्ण अमूर्त लोक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी स्थान मिला है। ये केवल जापान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सांस्कृतिक विरासत की एक अमूल्य धरोहर है। ऐसे उत्सव हमें शिक्षा देते हैं कि यदि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और सम्मान करें तो वे विश्व मंच पर भी सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकती हैं।
0: प्रदीप बसाक जी, सच कहा, ये परंपराएं हमें अपने अतीत, अपनी माटी से जोड़े रखती हैं। शांग्रीला जी, इस गियोन यामाकासा उत्सव को अपनी आंखों से देखने का मौका मुझे अभी तक नहीं मिला है, लेकिन वेबसाइट पर इसकी झलक देखकर ही मैं समझ सकती हूँ कि ये कितना शानदार उत्सव है।
1: जी हाँ, बिल्कुल।
0: इतनी भारी भरकम पालकियों को लोग जैसी मुस्तैदी के साथ लेकर दौड़ते हैं और जिस तरह से वे उसे जरा भी गिराए बिना मुड़ते हैं, वो वाकई हैरत अंगेज है।
1: सचमुच इस तरह का सामंजस्य यहाँ की लगभग हर मात्सुरी में देखने को मिल जाता है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले श्रोताओं को बता देते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी। तो मित्रों, नोट करें फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
0: कार्यक्रम चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। अब यह पत्र आया है ओडिशा में केसिंगा से। लिखने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं सुरेश अग्रवाल। अरे वाह, सुरेश जी ने भी हकाता गियोन उत्सव का जिक्र किया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, लिखते हैं, वार्षिक गियोन यामाकासा उत्सव का रोमांच, उल्लास और सांस्कृतिक वैभव समेटे आपका वीडियो देखकर मन आनंद और विस्मय से भर उठा। विशाल और भारी भरकम पालकियों को कंधों पर उठाए कहारों की टोलियां जिस अद्भुत समन्वय, अदम्य उत्साह और तीव्र गति से नगर की सड़कों पर दौड़ रही थीं, वह दृश्य सचमुच अविस्मरणीय और अलौकिक अनुभूति कराने वाला था। जन कल्याण एवं रोग निवारण की प्रार्थना की यह परंपरा भारतीय सांस्कृतिक मान्यताओं से आश्चर्यजनक साम्य का आभास कराती हैं। इतनी सुंदर, ज्ञानवर्धक और मन को संपन्दित कर देने वाली प्रस्तुति के लिए आभार।
1: सुरेश जी, आभार आपका भी, जो रथ यात्रा के व्यस्त समय के बीच आपने वक्त निकालकर पत्र लिखा। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब आप कार्यक्रम सुनने के साथ ही वीडियो में प्रेषित जानकारी का भी आनंद लेने लगे हैं।
0: जी,
1: कुछ बातों को देखिए शब्दों में बांधना असंभव सा हो जाता है, उन्हें देखने में ही मजा है। और ये 19 जुलाई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के बारे में सुरेश जी ने लिखा है, जापानी फोल्डिंग पंखे सेंसु तथा उसके इतिहास पर प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक लगी। इस प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। भारत में भी हाथ से झलने वाले पंखों की समृद्ध परंपरा रही है। आज भी देश के कुछ क्षेत्रों में इनके विविध और आकर्षक स्वरूप देखने को मिल जाते हैं। यद्यपि बैटरी से चलने वाले छोटे पंखों के प्रचलन के बाद हाथ पंखों का उपयोग काफी कम हो गया है, फिर भी ये हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत का सुंदर प्रतीक है। सही कहा उन्होंने इस बात को। और इसी संदर्भ में मैं ओडिशा के बांस की पत्तियों से निर्मित एक आकर्षक डिजाइनर हाथ पंखे का चित्र साझा कर रहा हूँ। आशा है यह आप सभी को पसंद आएगा। देखिए रोहिणी जी, उनका भेजा ये चित्र कितना रंग बिरंगा पंखा है।
0: अरे वाह, ऐसे पंखे तो मैंने भी अपने यहाँ देखे हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, और ये हरे और गुलाबी पंखे की डिजाइन कितनी सुंदर है।
1: जी वाकई।
0: और इसका आकार तो एक झंडे जैसा दिख रहा है।
1: जी हाँ, जी हाँ। और वाकई इसे देखकर दादी नानी की याद आ गई। उनके सिरहाने ये अक्सर रहता था।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और इसको घुमाते हुए हाथों की बढ़िया कसरत हो जाती है।
0: बिल्कुल, सो तो है।
1: अच्छा, 19 जुलाई के कार्यक्रम के लिए बनाई गई प्रोमो रील को अनेक लोगों ने पसंद किया और कमेंट भी किया है। फेसबुक पर कुछ कमेंट थे। जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे लिखते हैं, हमें आपका कार्यक्रम चेरी के देश से बहुत अच्छा लगता है। पश्चिम बंगाल की प्रियंका पांडे ने इसे वाव बताया है। वहीं लता पांडे, अनिल डोबरियाल, अरविंद कुमार मिश्रा, रेणु मिश्रा, सोनी मोनी और श्रुति ने इमोजी के जरिए इसे मजेदार बताया है।
0: आप सभी का आभार। शांग्रीला जी, आजकल ये प्रोमो रील लोगों में काफी खास लोकप्रिय हो रही है। तानाबाता उत्सव के बारे में रील तो ऐसी वायरल हुई कि पिछले 2 सप्ताह में 35,000 से ज्यादा लोगों ने देख ली है।
1: वाकई।
0: हाँ, वहीं जापान में ऑटो रिक्शा की रील भी खूब पसंद की गई और बहुत मजेदार कमेंट भी आए हैं। मोनिता मिधा लिखती हैं, लव दिस लाइन, ऑटो मिल गया जापान में। वहीं उमेश कुमार शर्मा कमेंट करते हैं, जापान में भी ऑटो होता है, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने हमें चालक महोदया से मिलवाया, मिलकर अच्छा लगा।

0: लेकिन उन्होंने हिंदी में आपसे बात की, यह जानकर आश्चर्य भी हुआ।
1: उमेश जी, जैसा कार्यक्रम में हमने बताया था कि ऑटो चालक NHK में हमारी सहयोगी होरी कोशी जी हैं, उन्होंने शौकिया ऑटो खरीदा है। भारत प्रवास के दौरान उन्हें इसकी सवारी इतनी मजेदार लगती थी कि मौका मिलने पर उन्होंने इसे खरीद ही लिया, लेकिन इसका आयात करने में उन्हें भारी रकम खर्च करनी पड़ी।
0: अब शौक के आगे खर्च को क्या देखना, शौक बड़ी चीज है। इस अगले कमेंट को पढ़कर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। आयुष खान लिखते हैं, 500 yen काटो ओवर एक्टिंग के।
1: आयुष जी, मजा आ गया आपका कमेंट सुनकर, 500 yen काटो ओवर एक्टिंग के। जरा सोचिए आप श्रोताओं के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इस रील पर ओम अग्रवाल का कमेंट है, जहां जापान में रोज नई नई कारें आती हैं, वहां इस कलयुग 2026 में ऑटो, भाई वाह।
0: ओम अग्रवाल जी, आजकल जापान में ऑटो रिक्शा खूब लोकप्रिय हो रहे हैं।
1: जी हाँ, लोग नए नए तरीकों से इनका उपयोग कर रहे हैं। कोई इसमें चाय की टपरी बना रहा है, तो कोई इसमें सोने का इंतजाम कर लंबी सैर की सवारी बना रहा है। ओम अग्रवाल जी का एक और कमेंट है, मेरे घर के पास भी 5 साल से ऑटो खड़ा है। लेकिन टोक्यो में जानकर आश्चर्य हुआ। हेमराज इसको एकदम दया वाला बताते हैं। लाल बाबू पांडे ने लिखा है, भारत में आपका स्वागत है। राघवेंद्र नौटियाल ने इसे गजब बताया। मुरारी साह ने बहुत बढ़िया लिखा और मृणालिका ओझा, अशोक मोजीदारा, राजेश गिरी ने इमोजी के जरिए नमस्कार लिखा है।
0: योकोहामा में जापानी महिला द्वारा संचालित दिलजोड़ कैफे की रील पर गोविंद सोनी का कमेंट है, शानदार प्रयास। भाषा और संस्कृतियों की समझ मजबूत होने से रिश्ते निश्चित ही प्रगाढ़ होंगे। जापान एक अद्भुत राष्ट्र है और जितनी भी मेरी समझ है उसके अनुसार ये एक शानदार देश है। मृणालिका ओझा लिखती हैं, बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण, सुंदर। वहीं अशोक डीवाई ने लिखा है कि दोनों शांतिप्रिय सभ्यता मिलकर एशिया टाइगर बन जाएंगी।
1: इतने मजेदार कमेंट के लिए सभी मित्रों का आभार। आपके कमेंट से जान पड़ता है कि रील बनाने के हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और रोहिणी जी, कार्यक्रम के शुरू में हमने हानाबी यानी आतिशबाजी की इतनी चर्चा की, तो क्यों ना चलते चलते ये गीत सुना जाए।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल।
1: गीत है हानाबी, जिसे स्वर दिया है आई ने।

0: दोस्तों आप गीत का आनंद लें और एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और रोहिणी रमन को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रिला जैन का कुनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को रोहिणी रमन का भी कुनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और लेकर आ गए हम आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: रोहिणी जी, क्या हाल है? जापान भर में जारी गर्मी की इस प्रचंड लहर में अपना सही से ख्याल तो रख रही है ना?
1: जी बिल्कुल रख रही हूँ। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने भी तापघात की चेतावनी जारी कर लोगों से तरह तरह की सावधानियां बरतने को कहा है। पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करने को कहा है।
0: जी, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन गर्मियों के दौरान होने वाले तरह तरह के उत्सवों और मत्सरियों का भी आनंद ले। जैसे बीते दिनों मुझे टोक्यो के एक लोकप्रिय इलाके ओदाइबा में आयोजित हानाबी यानी आतिशबाजी का लुत्फ उठाने का मौका मिला।
1: अरे वाह, ओदाइबा की हानाबी! करीब 10 साल पहले जब मैं पहली बार जापान आई थी तब मैं वहाँ रहती थी।
0: अच्छा।
1: तब देखी थी। जी बहुत मजा आया था। समुद्र किनारे बैठकर ठंडी ठंडी बयार का आनंद लेते हुए आसमान में टिमटिमाती रंग बिरंगी आतिशबाजी सचमुच कमाल की थी।
0: अच्छा, आपने भी देखी। वैसे जानती है जापान भर में गर्मियों के दिनों में हानाबी के सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं। छोटे बड़े मिलाकर लगभग 1000 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
1: अच्छा, यानी इन दिनों हर सप्ताह कहीं न कहीं एक हानाबी का कार्यक्रम।
0: जी,
1: लोगों के मनोरंजन का जबरदस्त इंतजाम है ये तो। सुना है कि हर आयोजन में 10 से 30 हजार आतिशबाजी छोड़ी जाती है। वैसे ये बताएं कि हानाबी का आयोजन गर्मियों के दिनों में ही क्यों होता है?
0: असल में इसके कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मौसमी कारण हैं। इनका इतिहास जापान के एदो काल में जाता है। 1733 में अकाल और बीमारियों से मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति और सम्मान तथा भविष्य में आपदाओं से संरक्षण की प्रार्थना के रूप में इनका आयोजन किया जाने लगा। इनमें सबसे प्रसिद्ध रही सुमेधा नदी पर होने वाली आतिशबाजी। उसके बाद ये परंपरा देश भर में फैल गई। गर्मियों की रातें सुहावनी हुआ करती थीं और लोग घरों के बाहर निकल सकते थे। साथ ही पुराने जमाने में धान की रुपाई के बाद और कटाई से पहले किसानों के पास थोड़ा समय होता था जिसमें वे इनका आनंद ले सकते थे।
1: अच्छा, यानी वक्त के साथ हानाबी गर्मी के दिनों की मात्सुरियों का अहम हिस्सा बन गई।
0: जी।
1: अच्छा, जब लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र या नदी किनारे इनका आनंद लेने जाते हैं। मैंने देखा है कि इन मात्सुरियों में मेले भी लगते हैं जिनमें पास पड़ोस के लोगों के साथ मिलना जुलना भी हो जाता है।
0: जी हाँ, और अक्सर लोग गर्मियों की पारंपरिक जापानी पोशाक युकाता में दिखाई देते हैं।
1: अच्छा
0: अच्छा, रोहिणी जी, आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि हानाबी का आयोजन मुख्य रूप से नदी किनारे या समुद्र तट पर किया जाता है, क्योंकि एक तो इससे लकड़ी के मकान सुरक्षित रहते हैं
1: और दूसरे इन इलाकों में हवा भी होती है जिससे धुआं फटाफट गायब हो जाता है।
0: जी बिल्कुल सही। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि हानाबी का शाब्दिक अर्थ क्या है?
1: हाना तो पता है, हाना यानी फूल, जो जापानी लोगों को बेहद प्रिय होते हैं। यहाँ हर मौसम का एक खास पुष्प मिल जाएगा। बी का क्या अर्थ है?
0: बी का अर्थ है आग, यानी हानाबी का मतलब हुआ आग के फूल।
1: अरे वाह, आग के फूल! तभी मैं देखूं कि ज्यादातर हानाबी जब आकाश में फूटती हैं, सुंदर से फूल के जैसे दिखाई देती हैं, जैसे गुलदाउदी का फूल हो।
0: जी, गुलदाउदी और पियोनी के फूलों जैसी

0: आतिशबाजी सबसे लोकप्रिय हैं। फिर कुछ आसमान में शिदारे यानागी यानी वीपिंग विलो या तितली या झरनी जैसी भी दिखाई देती हैं। स्याह आकाश जब इनसे रोशन होता है तो कितना रोमांचक दृश्य दिखता है।
1: सचमुच गर्मियों में इन उत्सवों की धूम सारी थकान और बेचैनी खत्म कर देती है और मन उल्लास से भर जाता है।
0: वाकई, और मेरा मन हर सप्ताह मिलने वाले ढेर सारे पत्रों से खुश हो जाता है। तो उठाते हैं ये पत्र जिनमें श्रोता मित्रों की राय किसी पटाखे से कम नहीं है।
1: तो चलिए मैं लेती हूँ यह पत्र। पूर्व बर्धमान पश्चिम बंगाल से प्रदीप बसाक ने उनके गांव में आयोजित होने वाली श्री जगन्नाथ प्रभु रथ यात्रा के बारे में जिक्र किया है।
0: अरे वाह, हम भी अभी जापान के उत्सवों की बात ही कर रहे थे और देखे ये उत्सव पर पत्र आ गया। जानती है, 2 साल पहले चेरी की देश से कार्यक्रम के लिए मैंने टोक्यो में आयोजित होने वाली रथ यात्रा की रिपोर्टिंग भी की थी।
1: अरे वाह,
0: चलिए आगे बताएं कि प्रदीप जी क्या लिखते हैं।
1: जी लिखते हैं, शुभ रथ यात्रा के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे गांव में रथ यात्रा का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है बल्कि हमारे गांव की परंपरा, आपसी सद्भाव और मिलन का एक अनोखा अवसर है। रथ यात्रा के अवसर पर हमारे गाँव में भव्य मेला लगा है। मेले का उत्सवमय वातावरण मन को आनंद से भर देता है। गर्मा गर्म जलेबी, तरह तरह की मिठाइयाँ, कुरकुरे पापड़, भुनी हुई मूंगफली, स्वादिष्ट घुगनी, मुगलई तथा अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की दुकानों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। सभी के बीच प्रेम, अपनापन और भाईचारे का सुंदर वातावरण बन जाता है। यही मिलन हमारे ग्रामीण जीवन और सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी पहचान है तथा नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का माध्यम भी है। मेरा विश्वास है कि रथ यात्रा का यह पावन उत्सव हम सभी के जीवन में प्रेम, सद्भाव, मानवता और पारस्परिक सम्मान का संदेश फैलाएगा।
0: सभी मित्रों को भी रथ यात्रा की बधाई। और प्रदीप जी, आपने अपने यहाँ की जगन्नाथ यात्रा की ऐसी विस्तृत जानकारी दी कि लगता है मानो हम भी आपके साथ मेले में पहुँच गए हों। और देखिए, प्रदीप जी ने अपना एक और पत्र भेजा है जिसमें वे जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के फुकुओका के पारंपरिक हाकाता गियोन यामाकासा उत्सव के बारे में एनएचके वर्ल्ड जापान के फेसबुक पोस्ट के बारे में उन्होंने लिखा है।
1: जी,
0: लिखते हैं कि इस उत्सव के बारे में जानकर मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। लगभग 780 वर्षों से भी अधिक समय से आयोजित होने वाला यह उत्सव केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है बल्कि यह लोगों की एकता, साहस, अनुशासन और पारस्परिक सहयोग का अद्वितीय प्रतीक है। सजी हुई भारी भरकम झांकियों को कंधों पर उठाकर लोग जिस उत्साह और अद्भुत सामंजस्य के साथ तेजी से आगे बढ़ते हैं उसे देखकर सहज ही समझा जा सकता है कि किसी परंपरा को जीवित रखने के लिए लोगों का प्रेम कितना गहरा हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसी भावना और उत्साह के साथ इस उत्सव को आगे बढ़ाना जापानी संस्कृति की मजबूत नींव का परिचायक है। विशेष रूप से यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस उत्सव को जापान की महत्वपूर्ण अमूर्त लोक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी स्थान मिला है। ये केवल जापान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सांस्कृतिक विरासत की एक अमूल्य धरोहर है। ऐसे उत्सव हमें शिक्षा देते हैं कि यदि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और सम्मान करें तो वे विश्व मंच पर भी सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकती हैं।
1: प्रदीप बसाक जी, सच कहा, ये परंपराएं हमें अपने अतीत, अपनी माटी से जोड़े रखती हैं। शांग्रीला जी, इस गियोन यामाकासा उत्सव को अपनी आंखों से देखने का मौका मुझे अभी तक नहीं मिला है, लेकिन वेबसाइट पर इसकी झलक देखकर ही मैं समझ सकती हूँ कि ये कितना शानदार उत्सव है।
0: जी हाँ, बिल्कुल।
1: इतनी भारी भरकम पालकियों को लोग जैसी मुस्तैदी के साथ लेकर दौड़ते हैं और जिस तरह से वे उसे जरा भी गिराए बिना मुड़ते हैं वो वाकई हैरत अंगेज है।
0: सचमुच इस तरह का सामंजस्य यहाँ की लगभग हर मात्सुरी में देखने को मिल जाता है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले श्रोताओं को बता देते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी। तो मित्रों, नोट करें फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: कार्यक्रम चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। अब यह पत्र आया है ओडिशा में केसिंगा से। लिखने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं सुरेश अग्रवाल। अरे वाह, सुरेश जी ने भी हाकाता गियोन उत्सव का जिक्र किया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, लिखते हैं, वार्षिक गियोन यामाकासा उत्सव का रोमांच, उल्लास और सांस्कृतिक वैभव समेटे आपका वीडियो देखकर मन आनंद और विस्मय से भर उठा। विशाल और भारी भरकम पालकियों को कंधों पर उठाए कहारों की टोलियां जिस अद्भुत समन्वय, अदम्य उत्साह और तीव्र गति से नगर की सड़कों पर दौड़ रही थीं, वह दृश्य सचमुच अविस्मरणीय और अलौकिक अनुभूति कराने वाला था। जन कल्याण एवं रोग निवारण की प्रार्थना की यह परंपरा भारतीय सांस्कृतिक मान्यताओं से आश्चर्यजनक साम्य का आभास कराती हैं। इतनी सुंदर, ज्ञानवर्धक और मन को संपन्दित कर देने वाली प्रस्तुति के लिए आभार।
0: सुरेश जी, आभार आपका भी, जो रथ यात्रा के व्यस्त समय के बीच आपने वक्त निकालकर पत्र लिखा। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब आप कार्यक्रम सुनने के साथ ही वीडियो में प्रेषित जानकारी का भी आनंद लेने लगे हैं।
1: जी,
0: कुछ बातों को देखिए शब्दों में बांधना असंभव सा हो जाता है, उन्हें देखने में ही मजा है। और ये 19 जुलाई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के बारे में सुरेश जी ने लिखा है, जापानी फोल्डिंग पंखे सेंसु तथा उसके इतिहास पर प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक लगी। इस प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। भारत में भी हाथ से झलने वाले पंखों की समृद्ध परंपरा रही है। आज भी देश के कुछ क्षेत्रों में इनके विविध और आकर्षक स्वरूप देखने को मिल जाते हैं। यद्यपि बैटरी से चलने वाले छोटे पंखों के प्रचलन के बाद हाथ पंखों का उपयोग काफी कम हो गया है, फिर भी ये हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत का सुंदर प्रतीक है। सही कहा उन्होंने इस बात को। और इसी संदर्भ में मैं ओडिशा के बांस की पत्तियों से निर्मित एक आकर्षक डिजाइनर हाथ पंखे का चित्र साझा कर रहा हूँ। आशा है ये आप सभी को पसंद आएगा। देखिए रोहिणी जी, उनका भेजा ये चित्र कितना रंग बिरंगा पंखा है।
1: अरे वाह, ऐसे पंखे तो मैंने भी अपने यहाँ देखे हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ, और ये हरे और गुलाबी पंखे की डिजाइन कितनी सुंदर है।
0: जी वाकई।
1: और इसका आकार तो एक झंडे जैसा दिख रहा है।
0: जी हाँ, जी हाँ। और वाकई इसे देखकर दादी नानी की याद आ गई। उनके सिरहाने ये अक्सर रहता था।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और इसको घुमाते हुए हाथों की बढ़िया कसरत हो जाती है।
1: बिल्कुल, सो तो है।
0: अच्छा, 19 जुलाई के कार्यक्रम के लिए बनाई गई प्रोमो रील को अनेक लोगों ने पसंद किया और कमेंट भी किया है। फेसबुक पर कुछ कमेंट थे। जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे लिखते हैं, हमें आपका कार्यक्रम चेरी के देश से बहुत अच्छा लगता है। पश्चिम बंगाल की प्रियंका पांडे ने इसे वाव बताया है। वहीं लता पांडे, अनिल डोबरियाल, अरविंद कुमार मिश्रा, रेणु मिश्रा, सोनी मोनी और श्रुति ने इमोजी के जरिए इसे मजेदार बताया है।
1: आप सभी का आभार। शांग्रीला जी, आजकल ये प्रोमो रील लोगों में काफी खास लोकप्रिय हो रही है। तानाबाता उत्सव के बारे में रील तो ऐसी वायरल हुई कि पिछले 2 सप्ताह में 35,000 से ज्यादा लोगों ने देख ली है।
0: वाकई।
1: हाँ, वहीं जापान में ऑटो रिक्शा की रील भी खूब पसंद की गई और बहुत मजेदार कमेंट भी आए हैं। मोनिता मिधा लिखती हैं, लव दिस लाइन, ऑटो मिल गया जापान में। वहीं उमेश कुमार शर्मा कमेंट करते हैं, जापान में भी ऑटो होता है, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने हमें चालक महोदया से मिलवाया, मिलकर अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने हिंदी में आपसे बात की, यह जानकर आश्चर्य भी हुआ।
0: उमेश जी, जैसा कार्यक्रम में हमने बताया था कि ऑटो चालक NHK में हमारी सहयोगी खोरी कोशी जी हैं, उन्होंने शौकिया ऑटो खरीदा है। भारत प्रवास के दौरान उन्हें इसकी सवारी इतनी मजेदार लगती थी कि मौका मिलने पर उन्होंने इसे खरीद ही लिया, लेकिन इसका आयात करने में उन्हें भारी रकम खर्च करनी पड़ी।
1: अब शौक के आगे खर्च को क्या देखना, शौक बड़ी चीज है। इस अगले कमेंट को पढ़कर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। आयुष खान लिखते हैं, 500 येन काटो ओवर एक्टिंग के।
0: आयुष जी, मजा आ गया आपका कमेंट सुनकर, 500 येन काटो ओवर एक्टिंग के। जरा सोचिए आप श्रोताओं के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इस रील पर ओम अग्रवाल का कमेंट है, जहां जापान में रोज नई नई कारें आती हैं, वहां इस कलयुग 2026 में ऑटो, भाई वाह।
1: ओम अग्रवाल जी, आजकल जापान में ऑटो रिक्शा खूब लोकप्रिय हो रहे हैं।
0: जी हाँ, लोग नए नए तरीकों से इनका उपयोग कर रहे हैं, कोई इसमें चाय की टपरी बना रहा है, तो कोई इसमें सोने का इंतजाम कर लंबी सैर की सवारी बना रहा है। ओम अग्रवाल जी का एक और कमेंट है, मेरे घर के पास भी 5 साल से ऑटो खड़ा है लेकिन तोक्यो में जानकर आश्चर्य हुआ। हेमराज इसको एकदम दया वाला बताते हैं। लाल बाबू पांडे ने लिखा है, भारत में आपका स्वागत है। राघवेंद्र नौटियाल ने इसे गजब बताया। मुरारी शाह ने बहुत बढ़िया लिखा और मृणालिका ओझा, अशोक मोजीदारा, राजेश गिरी ने इमोजी के जरिए नमस्कार लिखा है।
1: योकोहामा में जापानी महिला द्वारा संचालित दिलजोड़ कैफे की रील पर गोविंद सोनी का कमेंट है, शानदार प्रयास। भाषा और संस्कृतियों की समझ मजबूत होने से रिश्ते निश्चित ही प्रगाढ़ होंगे। जापान एक अद्भुत राष्ट्र है और जितनी भी मेरी समझ है उसके अनुसार ये एक शानदार देश है। मृणालिका ओझा लिखती हैं, बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण, सुंदर। वहीं अशोक डीवाई ने लिखा है कि दोनों शांतिप्रिय सभ्यता मिलकर एशिया टाइगर बन जाएंगी।
0: इतने मजेदार कमेंट के लिए सभी मित्रों का आभार। आपके कमेंट्स से जान पड़ता है कि रील बनाने के हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और रोहिणी जी, कार्यक्रम के शुरू में हमने हनाबी यानी आतिशबाजी की इतनी चर्चा की, तो क्यों ना चलते चलते ये गीत सुना जाए।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: गीत है हनाबी, जिसे स्वर दिया है आई ने।

0: दोस्तों आप गीत का आनंद लें और एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और रोहिणी रमन को
0: सायोनारा नमस्कार।

0: गुल वैसे वतनाबे साहिबा ने बड़ा अच्छा मुतबादल इस्तेमाल किया है बा मछली का, क्योंकि सार्डिन भी गजाइयत से भरपूर होती है।
1: जी सोफी, और आपको तो पता ही है कि बाम कितनी महंगी होती है और सार्डिन तो इंतहाई मुनासिब कीमत में मिल जाती है और जापान में रोजमर्रा के खानों में इस्तेमाल होती है, इसलिए तो सारा साल दस्तयाब होती है।
0: जी गुल, और दूसरे कई ममालिक में भी इंतहाई आसानी से दस्तयाब होती है।
1: अच्छा ये बताएं कि अगर ना मिले तो फिर आज की डिश बनाने के लिए कौन सी मछली इस्तेमाल की जाए?
0: कोई बात नहीं, वही मछली यानी के बाम इस आसानी से अगर आपके मुल्क में दस्तयाब है तो इसे इस्तेमाल करें, जिसके नेमल बदल के तौर पर सार्डिन को इसके की डिश तैयार की गई है।
1: अच्छा, फिर तो बड़ी ये बेहतरीन सी डिश बन जाएगी ना?
0: बिल्कुल वही डिश बन जाएगी। और गुल, अगर दोनों में से

0: ये तो भूल ही गया। अच्छा, अगर इसे ना भी सजाया जाए तो काम तो चल जाएगा ना?
1: वो तो ठीक है, लेकिन कुछ हर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी खुशबू से किसी डिश में चार चांद लग जाते हैं। अच्छा। जैसे पुदीना, धनिया वगैरह हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं। मछली के साथ सोया एक हर्ब होता है जो हमारे यहाँ और कई मुल्कों में पाया जाता है, और मछली के साथ इसका बड़ा अच्छा इम्तिजाज होता है।
0: अच्छा, यानी आप कहना चाह रही हैं कि अगर आज की तरकीब में सोए को सांशो की जगह डाला जा सकता है।
1: जी बिल्कुल, और इसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। और गुल, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे सामने गर्मियों में ये डिश जरूर बनाएंगे।
0: जी, अगर बनाए तो हमें जरूर बताइएगा।
2: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं। इंटरनेट पर आप हमारे प्रोग्राम nhk.jp/urdu पर सुन सकते हैं।
3: जी सामाई, प्रोग्राम आपने सुना और सुनकर यकीनन आपका बेखाबाया के दोन खाने का दिल चाहने लगा होगा और मुंह में पानी भी आ रहा होगा। वैसे जब हम छोटे थे तो अम्मी कहा करती थी कि मछली की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में मछली कम खानी चाहिए। और वैसे भी गर्मियों में गोश्त या मछली से ज्यादा सब्जियां या हल्के फुल्के खाने खाने को दिल चाहता है। लेकिन जनाब, जापान में मछली हर मौसम में यकसा मकबूल है और मौसम के मुनासबत से इन्हें खाने का एहतमाम किया जाता है। जैसे अनागो काबाया के दोन, जिसे मौसम में गर्मा के एक खास वक्त में खाया जाता है और मौसम में गर्मा की खोई हुई ताकत को बहाल किया जाता है। इसी तरह से साम्मा या पैसिफिक सौरी मछली को मौसम में खिजा में खाया जाता है। इसकी वजह यह समझ में आती है कि इन खास दिनों में ये मछलियाँ अपनी गजाइत और जायके के उरुज पर होती हैं। तो आप भी अपने इलाके में दस्तियाब अज्जा से खबैया के दोन जरूर बनाएं और मौसम गर्मा की थकान को भगाएं, और हमें भी बताएं कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। इसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। उगते सूर्य के देश से सबसे पहले स्वीकार करें अपनी सखी शांगविला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को रोहिणी रमन का भी कोनिचिवा नमस्कार। फिर आया एक नया सप्ताह और लेकर आ गए हम आपके पत्रों के उत्तर और जापान के बारे में कई जानी अनजानी रोचक बातें।
0: रोहिणी जी, क्या हाल है? जापान भर में जारी गर्मी की इस प्रचंड लहर में अपना सही से ख्याल तो रख रही है ना?
1: जी बिल्कुल रख रही हूँ। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी ने भी तापघात की चेतावनी जारी कर लोगों से तरह तरह की सावधानियां बरतने को कहा है। पर्याप्त मात्रा में पानी और नमक का सेवन करने को कहा है।
0: जी, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, लेकिन गर्मियों के दौरान होने वाले तरह तरह के उत्सवों और मत्सरियों का भी आनंद ले। जैसे बीते दिनों मुझे टोक्यो के एक लोकप्रिय इलाके उदाइबा में आयोजित हानाबी यानी आतिशबाजी का लुत्फ उठाने का मौका मिला।
1: अरे वाह, उदाइबा की हानाबी! करीब 10 साल पहले जब मैं पहली बार जापान आई थी तब मैं वहाँ रहती थी।
0: अच्छा।
1: तब देखी थी। जी बहुत मजा आया था। समुद्र किनारे बैठकर ठंडी ठंडी बयार का आनंद लेते हुए आसमान में टिमटिमाती रंग बिरंगी आतिशबाजी सचमुच कमाल की थी।
0: अच्छा, आपने भी देखी। वैसे जानती है जापान भर में गर्मियों के दिनों में हानाबी के सैकड़ों कार्यक्रम होते हैं। छोटे बड़े मिलाकर लगभग 1000 कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
1: अच्छा, यानी इन दिनों हर सप्ताह कहीं न कहीं एक हानाबी का कार्यक्रम।
0: जी,
1: लोगों के मनोरंजन का जबरदस्त इंतजाम है ये तो। सुना है कि हर आयोजन में 10 से 30 हजार आतिशबाजी छोड़ी जाती है। वैसे ये बताएं कि हानाबी का आयोजन गर्मियों के दिनों में ही क्यों होता है?
0: असल में इसके कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मौसमी कारण हैं। इनका इतिहास जापान के एदो काल में जाता है। 1733 में अकाल और बीमारियों से मरने वाले लोगों की आत्मा की शांति और सम्मान तथा भविष्य में आपदाओं से संरक्षण की प्रार्थना के रूप में इनका आयोजन किया जाने लगा। इनमें सबसे प्रसिद्ध रही सुमेदा नदी पर होने वाली आतिशबाजी। उसके बाद ये परंपरा देश भर में फैल गई। गर्मियों की रातें सुहावनी हुआ करती थीं और लोग घरों के बाहर निकल सकते थे। साथ ही पुराने जमाने में धान की रुपाई के बाद और कटाई से पहले किसानों के पास थोड़ा समय होता था जिसमें वे इनका आनंद ले सकते थे।
1: अच्छा, यानी वक्त के साथ हानाबी गर्मी के दिनों की मात्सुरियों का अहम हिस्सा बन गई।
0: जी।
1: अच्छा, जब लोग परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर समुद्र या नदी किनारे इनका आनंद लेने जाते हैं। मैंने देखा है कि इन मात्सुरियों में मेले भी लगते हैं जिनमें पास पड़ोस के लोगों के साथ मिलना जुलना भी हो जाता है।
0: जी हाँ, और अक्सर लोग गर्मियों की पारंपरिक जापानी पोशाक युकाता में दिखाई देते हैं।
1: अच्छा
0: अच्छा, रोहिणी जी, आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि हानाबी का आयोजन मुख्य रूप से नदी किनारे या समुद्र तट पर किया जाता है, क्योंकि एक तो इससे लकड़ी के मकान सुरक्षित रहते हैं
1: और दूसरे इन इलाकों में हवा भी होती है जिससे धुआं फटाफट गायब हो जाता है।
0: जी बिल्कुल सही। अच्छा, क्या आप जानती हैं कि हानाबी का शाब्दिक अर्थ क्या है?
1: हाना तो पता है, हाना यानी फूल, जो जापानी लोगों को बेहद प्रिय होते हैं। यहाँ हर मौसम का एक खास पुष्प मिल जाएगा। बी का क्या अर्थ है?
0: बी का अर्थ है आग, यानी हानाबी का मतलब हुआ आग के फूल।
1: अरे वाह, आग के फूल! तभी मैं देखूं कि ज्यादातर हानाबी जब आकाश में फूटती हैं, सुंदर से फूल के जैसे दिखाई देती हैं, जैसे गुलदाउदी का फूल हो।
0: जी, गुलदाउदी और पियोनी के फूलों जैसी आतिशबाजी सबसे लोकप्रिय हैं। फिर कुछ आसमान में शिदारे यानागी यानी वीपिंग विलो या तितली या झरनी जैसी भी दिखाई देती हैं। स्या आकाश जब इनसे रोशन होता है तो कितना रोमांचक दृश्य दिखता है।
1: सचमुच गर्मियों में इन उत्सवों की धूम सारी थकान और बेचैनी खत्म कर देती है और मन उल्लास से भर जाता है।
0: वाकई, और मेरा मन हर सप्ताह मिलने वाले ढेर सारे पत्रों से खुश हो जाता है। तो उठाते हैं ये पत्र जिनमें श्रोता मित्रों की राय किसी पटाखे से कम नहीं है।
1: तो चलिए मैं लेती हूँ यह पत्र। पूर्व बर्धमान पश्चिम बंगाल से प्रदीप बसाक ने उनके गांव में आयोजित होने वाली श्री जगन्नाथ प्रभु रथ यात्रा के बारे में जिक्र किया है।
0: अरे वाह, हम भी अभी जापान के उत्सवों की बात ही कर रहे थे और देखे ये उत्सव पर पत्र आ गया। जानती है, 2 साल पहले चेरी की देव से कार्यक्रम के लिए मैंने टोक्यो में आयोजित होने वाली रथ यात्रा की रिपोर्टिंग भी की थी।
1: अरे वाह,
0: चलिए आगे बताएं कि प्रदीप जी क्या लिखते हैं।
1: जी लिखते हैं, शुभ रथ यात्रा के पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक बधाई। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे गांव में रथ यात्रा का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि हमारे गांव की परंपरा, आपसी सद्भाव और मिलन का एक अनोखा अवसर है। रथ यात्रा के अवसर पर हमारे गांव में भव्य मेला लगा है। मेले का उत्सवमय वातावरण मन को आनंद से भर देता है। गर्मा गर्म जलेबी, तरह तरह की मिठाइयाँ, कुरकुरे पापड़, भुनी हुई मूंगफली, स्वादिष्ट घुगनी, मुगलई तथा अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की दुकानों पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। सभी के बीच प्रेम, अपनापन और भाईचारे का सुंदर वातावरण बन जाता है। यही मिलन हमारे ग्रामीण जीवन और सांस्कृतिक विरासत की सबसे बड़ी पहचान है तथा नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का माध्यम भी है। मेरा विश्वास है कि रथ यात्रा का यह पावन उत्सव हम सभी के जीवन में प्रेम, सद्भाव, मानवता और पारस्परिक सम्मान का संदेश फैलाएगा।
0: सभी मित्रों को

0: भी रथ यात्रा की बधाई। और प्रदीप जी, आपने अपने यहाँ की जगन्नाथ यात्रा की ऐसी विस्तृत जानकारी दी कि लगता है मानो हम भी आपके साथ मेले में पहुँच गए हों। और देखिए, प्रदीप जी ने अपना एक और पत्र भेजा है जिसमें वे जापान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के फुकुओका के पारंपरिक हाकाता गियोन यामाकासा उत्सव के बारे में एनएचके वर्ल्ड जापान के फेसबुक पोस्ट के बारे में उन्होंने लिखा है।
1: जी,
0: लिखते हैं कि इस उत्सव के बारे में जानकर मैं सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। लगभग 780 वर्षों से भी अधिक समय से आयोजित होने वाला यह उत्सव केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह लोगों की एकता, साहस, अनुशासन और पारस्परिक सहयोग का अद्वितीय प्रतीक है। सजी हुई भारी भरकम झांकियों को कंधों पर उठाकर लोग जिस उत्साह और अद्भुत सामंजस्य के साथ तेजी से आगे बढ़ते हैं, उसे देखकर सहज ही समझा जा सकता है कि किसी परंपरा को जीवित रखने के लिए लोगों का प्रेम कितना गहरा हो सकता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उसी भावना और उत्साह के साथ इस उत्सव को आगे बढ़ाना जापानी संस्कृति की मजबूत नींव का परिचायक है। विशेष रूप से यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस उत्सव को जापान की महत्वपूर्ण अमूर्त लोक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है तथा इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी स्थान मिला है। यह केवल जापान ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सांस्कृतिक विरासत की एक अमूल्य धरोहर है। ऐसे उत्सव हमें ये शिक्षा देते हैं कि यदि हम अपनी संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण और सम्मान करें तो वे विश्व मंच पर भी सम्मान का स्थान प्राप्त कर सकती हैं।
1: प्रदीप बसाक जी, सच कहा, ये परंपराएं हमें अपने अतीत, अपनी माटी से जोड़े रखती हैं। शांग्रीला जी, इस गियोन यामाकासा उत्सव को अपनी आंखों से देखने का मौका मुझे अभी तक नहीं मिला है, लेकिन वेबसाइट पर इसकी झलक देखकर ही मैं समझ सकती हूँ कि ये कितना शानदार उत्सव है।
0: जी हाँ, बिल्कुल।
1: इतनी भारी भरकम पालकियों को लोग जैसी मुस्तैदी के साथ लेकर दौड़ते हैं और जिस तरह से वे उसे जरा भी गिराए बिना मुड़ते हैं, वो वाकई हैरत अंगेज है।
0: सचमुच इस तरह का सामंजस्य यहाँ की लगभग हर मात्सुरी में देखने को मिल जाता है। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले श्रोताओं को बता देते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी। तो मित्रों, नोट करें फ्रीक्वेंसी।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्ट वेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।
1: कार्यक्रम चेरी के देश से में आपका फिर स्वागत है। अब यह पत्र आया है ओडिशा में केसिंगा से। लिखने वाले हमारे नियमित श्रोता हैं सुरेश अग्रवाल। अरे वाह, सुरेश जी ने भी हाकाता गियोन उत्सव का जिक्र किया है।
0: अच्छा।
1: हाँ, लिखते हैं, वार्षिक गियोन यामाकासा उत्सव का रोमांच, उल्लास और सांस्कृतिक वैभव समेटे आपका वीडियो देखकर मन आनंद और विस्मय से भर उठा। विशाल और भारी भरकम पालकियों को कंधों पर उठाए कहारों की टोलियां जिस अद्भुत समन्वय, अदम्य उत्साह और तीव्र गति से नगर की सड़कों पर दौड़ रही थीं, वह दृश्य सचमुच अविस्मरणीय और अलौकिक अनुभूति कराने वाला था। जन कल्याण एवं रोग निवारण की प्रार्थना की यह परंपरा भारतीय सांस्कृतिक मान्यताओं से आश्चर्यजनक साम्य का आभास कराती हैं। इतनी सुंदर, ज्ञानवर्धक और मन को संपन्दित कर देने वाली प्रस्तुति के लिए आभार।
0: सुरेश जी, आभार आपका भी, जो रथ यात्रा के व्यस्त समय के बीच आपने वक्त निकालकर पत्र लिखा। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब आप कार्यक्रम सुनने के साथ ही वीडियो में प्रेषित जानकारी का भी आनंद लेने लगे हैं।
1: जी,
0: कुछ बातों को देखिए शब्दों में बांधना असंभव सा हो जाता है, उन्हें देखने में ही मजा है। और ये 19 जुलाई को प्रसारित चेरी के देश से कार्यक्रम के बारे में सुरेश जी ने लिखा है, जापानी फोल्डिंग पंखे सेंसु तथा उसके इतिहास पर प्रस्तुत जानकारी अत्यंत रोचक लगी। इस प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद। भारत में भी हाथ से झलने वाले पंखों की समृद्ध परंपरा रही है। आज भी देश के कुछ क्षेत्रों में इनके विविध और आकर्षक स्वरूप देखने को मिल जाते हैं। यद्यपि बैटरी से चलने वाले छोटे पंखों के प्रचलन के बाद हाथ पंखों का उपयोग काफी कम हो गया है, फिर भी ये हमारी लोक कला और सांस्कृतिक विरासत का सुंदर प्रतीक है। सही कहा उन्होंने इस बात को। और इसी संदर्भ में मैं ओडिशा के बांस की पत्तियों से निर्मित एक आकर्षक डिजाइनर हाथ पंखे का चित्र साझा कर रहा हूँ, आशा है ये आप सभी को पसंद आएगा। देखिए रोहिणी जी, उनका भेजा ये चित्र कितना रंग बिरंगा पंखा है।
1: अरे वाह, ऐसे पंखे तो मैंने भी अपने यहाँ देखे हैं।
0: अच्छा?
1: हाँ, और ये हरे और गुलाबी पंखे की डिजाइन कितनी सुंदर है।
0: जी वाकई।
1: और इसका आकार तो एक झंडे जैसा दिख रहा है।
0: जी हाँ जी हाँ, और वाकई इसे देखकर दादी नानी की याद आ गई। उनके सिरहाने ये अक्सर रहता था।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और इसको घुमाते हुए हाथों की बढ़िया कसरत हो जाती है।
1: बिल्कुल, सो तो है।
0: अच्छा, 19 जुलाई के कार्यक्रम के लिए बनाई गई प्रोमो रील को अनेक लोगों ने पसंद किया और कमेंट भी किया है। फेसबुक पर कुछ कमेंट थे। जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे लिखते हैं, हमें आपका कार्यक्रम चेरी के देश से बहुत अच्छा लगता है। पश्चिम बंगाल की प्रियंका पांडे ने इसे वाव बताया है। वहीं लता पांडे, अनिल डोबरियाल, अरविंद कुमार मिश्रा, रेणु मिश्रा, सोनी मोनी और श्रुति ने इमोजी के जरिए इसे मजेदार बताया है।
1: आप सभी का आभार। शांग्रीला जी, आजकल ये प्रोमो रील लोगों में काफी खास लोकप्रिय हो रही है। ताना बाता उत्सव के बारे में रील तो ऐसी वायरल हुई कि पिछले 2 सप्ताह में 35,000 से ज्यादा लोगों ने देख ली है।
0: वाकई?
1: हाँ। वहीं जापान में ऑटो रिक्शा की रील भी खूब पसंद की गई और बहुत मजेदार कमेंट भी आए हैं। मोनिता मिधा लिखती हैं, लव दिस लाइन, ऑटो मिल गया जापान में। वहीं उमेश कुमार शर्मा कमेंट करते हैं, जापान में भी ऑटो होता है, यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपने हमें चालक महोदया से मिलवाया, मिलकर अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने हिंदी में आपसे बात की, यह जानकर आश्चर्य भी हुआ।
0: उमेश जी, जैसा कार्यक्रम में हमने बताया था कि ऑटो चालक एनएचके में हमारी सहयोगी होरी कोशी जी हैं, उन्होंने शौकिया ऑटो खरीदा है। भारत प्रवास के दौरान उन्हें इसकी सवारी इतनी मजेदार लगती थी कि मौका मिलने पर उन्होंने इसे खरीद ही लिया, लेकिन इसका आयात करने में उन्हें भारी रकम खर्च करनी पड़ी।
1: अब शौक के आगे खर्च को क्या देखना, शौक बड़ी चीज है। इस अगले कमेंट को पढ़कर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। आयुष खान लिखते हैं, 500 येन काटो ओवर एक्टिंग के।
0: आयुष जी, मजा आ गया आपका कमेंट सुनकर, 500 येन काटो ओवर एक्टिंग के। जरा सोचिए, आप श्रोताओं के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इस रील पर ओम अग्रवाल का कमेंट है, जहां जापान में रोज नई नई कारें आती हैं, वहां इस कलयुग 2026 में ऑटो, भाई वाह।
1: ओम अग्रवाल जी, आजकल जापान में ऑटो रिक्शा खूब लोकप्रिय हो रहे हैं।
0: जी हाँ, लोग नए नए तरीकों से इनका उपयोग कर रहे हैं। कोई इसमें चाय की टपरी बना रहा है, तो कोई इसमें सोने का इंतजाम कर लंबी सैर की सवारी बना रहा है। ओम अग्रवाल जी का एक और कमेंट है, मेरे घर के पास भी 5 साल से ऑटो खड़ा है, लेकिन तोक्यो में जानकर आश्चर्य हुआ। हेमराज इसको एकदम दया वाला बताते हैं। लाल बाबू पांडे ने लिखा है, भारत में आपका स्वागत है। राघवेंद्र नौटियाल ने इसे गजब बताया। मुरारी शाह ने बहुत बढ़िया लिखा और मृणालिका ओझा, अशोक मोजीदारा, राजेश गिरी ने इमोजी के जरिए नमस्कार लिखा है।
1: योकोहामा में जापानी महिला द्वारा संचालित दिलजोड़ कैफे की रील पर गोविंद सोनी का कमेंट है, शानदार प्रयास। भाषा और संस्कृतियों की समझ मजबूत होने से रिश्ते निश्चित ही प्रगाढ़ होंगे। जापान एक अद्भुत राष्ट्र है और जितनी भी मेरी समझ है उसके अनुसार ये एक शानदार देश है। मृणालिका ओझा लिखती हैं, बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण, सुंदर। वहीं अशोक डीवाई ने लिखा है कि दोनों शांतिप्रिय सभ्यता मिलकर एशिया टाइगर बन जाएंगी।
0: इतने मजेदार कमेंट के लिए सभी मित्रों का आभार। आपके कमेंट से जान पड़ता है कि रील बनाने के हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और रोहिणी जी, कार्यक्रम के शुरू में हमने हानाबी यानी आतिशबाजी की इतनी चर्चा की, तो क्यों ना चलते चलते ये गीत सुना जाए।
1: जी
0: तो
1: बिल्कुल।
0: गीत है हानाबी, जिसे स्वर दिया है आई ने।

0: दोस्तों आप गीत का आनंद लें और एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और रोहिणी रमन को।
0: सायोनारा, नमस्कार।

सब्जियां या हल्के फुल्के खाने खाने को दिल चाहता है। लेकिन जनाब, जापान में मछली हर मौसम में यकसा मकबूल है और मौसम की मुनासिबत से इन्हें खाने का एहतमाम किया जाता है। जैसे अनागो काबाया की दोन, जिसे मौसम में गर्मा के एक खास वक्त में खाया जाता है और मौसम में गर्मा की खोई हुई ताकत को बहाल किया जाता है। इसी तरह से सामा या पैसिफिक सौरी मछली को मौसम में खिजा में खाया जाता है। इसकी वजह ये समझ में आती है कि इन खास दिनों में ये मछलियाँ अपनी गजाइत और जायके के उरुज पर होती हैं। तो आप भी अपने इलाके में दस्तियाब अज्जा से खबैया की दोन जरूर बनाएं और मौसम गर्मा की थकान को भगाएं, और हमें भी बताएं कि आपका तजुर्बा कैसा रहा। इसके लिए हमारी वेबसाइट का पता है nhk.jp/urdu। और अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।